तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, रखो हो रखन हार दयाला, नानक करके गोले।

जैसी जल में है कमल निरालम, मुर्गाई नैसाणे सुरत शब्द पव सागर तरिया, नानक नाम वखाणे ज्ञानन में ज्ञान अर ध्यानन में ध्यान गुर, सकल धर्म में है गृहस्थ प्रधान है, सो कहो तल गुर सेविए अहनिस सहज सुपाए, दर्शन परसे आए गुरु के जन्म मरण दुख जाए, होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है, तुद जिठे सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटी है, सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहां दे साहो, जिस पास बहिठिया सोही है सब नां दा वेसा हो, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक दया करणं दुख हरणं उच्चरणं नाम कीर्तन है, दयाल पुरख भगवान है,

विश्राम। हा मैला मल कबहु ना धोवै, हर का नाम कोट पाप खोवै। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइय साध कै संग। जे मारग के गने जाहे ना कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। जय पैंडै महा अंत गुबारा, हर का नाम संगु जियारा। जहाँ पंथ तेरा को ना से आनु, हर का नाम तै नाल पछानु। जय माँ प्यान तप तव काम, तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम। जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर्ख है, तै नानक हर हर अमृत बरख है। भगत जना की बरतन नाम, संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदर जन कोट। हार जस करत संत दिन रात, हर हर औखत साथ कमात। हर जन के हर नाम निदान, पार ब्रह्मचंद की नो दान। मन तन रंग रते रंग एक है, नानक जन के बिरत विवेकै। हर का नाम जन को मुक्त दुक्त, हर के नाम जन को तृप्त भुगत।

तेरी अनिक करहै हर पूजा जी, तब तापह जपह बेअंता। तेरे अनेक पढ़ै बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पावह मेरे हर भगवंता। तू आदि मूर्ख अपरंपर करता जी, तुझ जेवड़ अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा, सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई। तुदे आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करै है सो होई। तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुदे आपे सिरज सब गोई।

गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग।

दुष्ट दुख ते लेहु बचाई। कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभ्राता। खिल बिख सगल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई। अड़िल सुनै गुंग जो याहे, सुरस न पावई। सुनै मूर्चित लाए चतुरतावई। दुख दर्द पाव निकट न तिन नर के रहै, हो जो जाकी एक बार। चौपाई को कहै चौपाई, संबत सत्रह है सहस पणिजय, अर्ध सहस उनती।

मंग अत बल नाम बहुमर्द नहें गण गंधर्व देव मानुख्यं पास पंखी विमोह नहें।

जगदीश्वर है हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर है सो कहो टल गुर सेवीय अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे आए गुरु कै

0: ज्ञान है आसन चढ़ियो, धर्म तनख कर गयो, भगत सिलो सिर चलड़ियो, पै नरपो हर अटल मन, शब्द गुर नेजा गड्यो, काम क्रोध लो मोह अपत, पंच दूत बखंड्यो, भुलो पोच पुआल तेजो तन, निरपत नाथ नानक बर, गुर अमरदास सच सल पण, तै दल जितो इब युद्ध कर, गुर अमरदास सच सल पण, तै दल जितो इब युद्ध कर।
1: कनहर बूंद

0: प्रणाम गुण गान मुदान
1: हर गाले गांजा नर परवान
0: अंकन प्रणाम मुन मन सलाम
1: हर नाले कांड बार नर मंड
0: अल्पव अनास मुन मन प्रकाश
1: गुण गान प्रणाम जल तन मुदाम
0: अंचिज अंग आसन अपंग
1: उपमाया पार गत मितु दार
0: चलतल मंड दिस

0: तोर देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया
1: कार्यक्रम को तोड़न हार सुबातन ही चक चार लवैया
0: साहेब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो

0: बितायो।
1: साज को सुन लियो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो।
0: काहुले पावन पूछ तरियो सिर काहुले लिंग करे लटकायो।
1: काहु लिखियो हर वाची दिशा में काहु पछा को शीश।

0: एकंकाश्री वागुरुजी की फते पाशाय दशमी कवियो पाश बेंती चौपी हमनी करो हाथ रक्षा पूर्ण हुई चित की इच्छा
1: सचन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा
0: हमरे दिस वै तुम गावो आप हाथ मुई बचावो
1: सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा।

0: ते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रंगाता
1: पुरख
0: जवन पग परे त्यारे तिनके तुम संकट सब तार
1: जो कल कोई बात आए है ताके काल नहीं आए है
0: रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट रिश्तरे तत्काला
1: के पर दुष्ण जाए न रो ताके ताप तुनिक मुआर हो
0: रिद्ध सिद्ध कर्मों सब होई दुष्चा चव सके न कोई।

0: सो पावे।
1: सदा सिव सलाह तेरी नाम मन वसावे।
0: नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे।
1: कहे नाम सच्चे साहिब क्या नाई खर तेरे।
0: साचा नाम मेरा आधारो।
1: साच नाम उदार मेरा जिन भुखा सब गवाइया।
0: करसान सुख मनाए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया।
1: दा कुर्बान किता गुरु विटो जिस दिया वडियाइया।
0: कहे नानक सुनो संतो सब दरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो।
1: वाजे पांच शब्द इतकार सभागे कार सभागे शुद्ध वाजे कला जित कर तारिया।
0: पांच दूत उद्वास कीते काल कंटक मारिया।
1: कर्म पाया तुत जिन को से नाम हर के लागे।
0: कहे नानक तै सुख होआ तित कर आनंद वाजे।
1: साची ले बिन देह न माणी देह न माणी लिवे बाजू क्या करे विचारिया।
0: उद्वार समत कोई नाही कृपा कर बनवारिया।
1: एस नु होर थाउ नाही शब्द लाग सवारिया।
0: कहे नानक लिवे बाजू क्या करे विचारिया।
1: आनंद आनंद सबको कहे आनंद गुरु ते जानिया।
0: जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया।
1: कर कृपा किल विकटे ज्ञान अंजन सारिया।
0: अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका सब सचे सवारिया।
1: कहे नानक यह आनंद है आनंद गुरु ते जानिया।
0: बाबा जिस तु दे सोई जन पावे।
1: पाविता सो जन दे जिनु होर क्या करे विचारिया।
0: एक परम भूले फिरे दै दिस नाम लाख सवारिया।
1: सादी मन फिर निर्मल जिन्ना पाणा पावे।
0: कहे नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे।
1: आओ संत प्यारे अकत की करे कहानी।
0: करे कहानी अकत केरी के द्वारे पाईए।
1: तन मन तन सब सों गुरु को हुक्म।

0: माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारी है।
1: मनो क्यों विसारी है, एवर दाता जे अगन में आहार पहुंचावे।
0: कोह पोए न सकी जिसनु अपनी लिव लावे।
1: अपनी जीव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है।
0: नानक एवर दाता सो क्यों मनो विसारी है।
1: जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया।
0: माया अगन सब इको जेही करते खेल रचाया।
1: जात इस पाना त जमया परवार पला पाया।
0: लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वर्ताया।
1: ए माया जित हर विसरे मोह जे पाओ दूजा लाया।
0: कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया।
1: हरे आप मुलक है मुल ना पाया जाए।
0: मुल ना पाया जाए किसे विटो रहे लोक विलाए।
1: ऐसा सतगुर जो जिमृत इसनु सिर सौंपिए विचो आप जाए।
0: जिस दा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए।

0: प्यास ना अन तू अनरस राच रही तेरी प्यास ना जाए,
1: प्यास ना जाए और कितने जिचर रस पले ना पाए।
0: हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बहुर न तिसना लागे आए,
1: हर रस कर्मी पाइए सतगुरु मिले जिस आए।
0: कहे नानक होर अनरस सब विसरे जा हर वसे मन आए।
1: शरीरा मेरिया तुम में जोत रखी ता तू जग में आया,
0: हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया।
1: अरे आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया।
0: गुर प्रसादी बुझे आता चलत होआ चलत नदरी आया।
1: कहे नानक सिष्ट का मूल रचिया जोत रखी ता तू जग में आया।
0: मन चाओ पया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया।
1: गाओ मंगल नित सखिए सोख दुख न व्यापे,
0: गुरु चरण लागे।

0: क्या तुझ कर्म कमाया,
1: हे कर्म कमाया तुझ शरीरा, जा तू जग में आया।
0: जिन्हा तेरा रचन रचया, सो हर मन न वसाया।
1: गुर प्रसादी हर मन वसया, पूरब लिखिया पाया।
0: नानक शरीर परवान हुआ, जिन सतगुरु सो चित लाया।
1: ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम में ज्योत तरी।

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे शब्द।

साम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छा साच रहे सबको सच सुमावे ऋग कह रहे अपरपुर राम नाम देवा मैसूर नाय नया प्राचुर जाए नानक तम मुखंत्र पाहे जो